0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: वारी जामा फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज, शाश्वत सचदेव का म्यूजिक, ज्योति नुरान आउट देयर. दिस इज बिग 106.2
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: क्या प्लान है, कैसा रहा आपका वीकेंड? वॉज इट लाइक अ वीकेंड दैट यू क्लब्ड विद द एंटायर वीक? वर यू वन ऑफ द स्मार्ट वंस हू टुक दैट मंडे ऑफ? एंड अगर ऐसा है तो इस वक्त क्यों सुन रहे हैं मुझे, इतनी जल्दी क्यों जाग गए यार, सो जाओ वापस कंबल ओढ़ के. बट व्हाट इज योर प्लान फॉर दिस लंबी चौड़ी ईद की वेकेशन दैट इज कमिंग अप? कुछ अगर आपने प्लान किया ऐसा जो कि तन को लगे तो मुझे बताओ. कॉल करो 800-1062 इज द नंबर. कमिंग अप टुमारो से लेकर ट्यूजडे से लेकर फ्राइडे तक एंड देन ऑन अ सैटरडे संडे, वाओ, दिस इज द धुरंधर ऑफ ऑल ब्रेक्स. कमिंग अप इन जस्ट वाइल, गाने का नाम है दिल वाले चोर, पति पत्नी और वो दो. फिल्म कैसा कर रही है ये भी आपको बताऊंगा इन जस्ट वाइल. रोचक कोहली ऑन द वोकल्स कमिंग अप अलॉन्ग विद आदित्य रिखाड़ी. इन केस देयर इज अ सॉन्ग दैट यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर, दिस इज द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट स्टार. कौन सा वो गाना है दैट रिचार्जेस योर बैटरीज अनलाइक एनी अदर सॉन्ग? गिव मी अ कॉल, लेट मी नो. 800-1062 पर.

0: बुड्ढे
1: नमस्ते।
0: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे।
1: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा, आप बात बताइए।
0: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
0: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ रहा है। देखिए
1: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood. Take a break with Ajman Free Zone. Get your business license in one click, starting from only 5,555 dirhams. Big 106.2. The Big Breakfast, brought to you by Fly Dubai. One flight, endless stories.
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: Now listen to your favorite songs on repeat without any interruption. Download the Big Fan app for unlimited song selection. Available on iOS and Android.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है Sid on the Big Breakfast only on Big 106.2 The Beat of Bollywood।

0: प्रीतम महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य, रुआ के इस गाने को लेकर हुआ के एक और बार
1: 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
0: हाँ, हुआ कि एक और बार प्रीतम चक्रवर्ती पर प्लेजरिज्म का एलिगेशन लग गया है। दैट इज दैट सॉन्ग माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2 इंस्पायर्ड बाय दिस वन। It is an Italian a folk song and people are saying that ek aur bar Pritam Da is doing what Pritam Da is best at, copy a song, don't give credit. Lagta hai aapko ki Mashuka has copied? I think this song is more inspired by that song.
2: Nasha ye pyar ka nasha hai, ye meri baat yaar maano.
0: And this song is not composed by Pritam Chakrabarty for sure. अगर आपको इस आमिर खान गाने की फिल्म का नाम याद आ रहा है तो मुझे कॉल करके बताओ 800-1062 पर। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड।

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: देखो देखो वहाँ क्या
1: नाम है सेठ ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: इट्स नाइस एंड रिलैक्स्ड मंडे मॉर्निंग. स्कूल की छुट्टियां हैं एंड कुछ अकलमंद लोग ऑलरेडी वेकेशन पर निकल चुके हैं.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: सो सिंस इट्स सो नाइस एंड रिलैक्स्ड दिस मंडे मॉर्निंग, इट्स द परफेक्ट टाइम फॉर अस टू लिसन टू अ सॉन्ग टुगेदर, अ सॉन्ग दैट इज रियली क्रिएटिंग वेव्स. एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट. एंड जब भी रेखा भारद्वाज, दैट इज वन सिंगर, अगेन आई मीन एक पूरी लिस्ट मुझे बनानी चाहिए सिंगर्स दैट शुड सिंग मोर. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, बट देन आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ कन्फ्यूज कि अगर ये ओवर सिंग करेंगे वेन इट काइंड ऑफ लूज द शीन. हाँ, सुरेखा भारद्वाज वन ऑफ दोज सिंगर्स जो कि जुम्मा जुम्मा ही गाती हैं, लेकिन जब गाती हैं तो कमाल कर देती हैं. कोक स्टूडियो भारत का एक लेटेस्ट गाना है, इट्स कॉल्ड कचौड़ी गली एंड इट इज़ अ वेरी नाइस सोलफुल रोमांटिक, रोमांटिक तो नहीं कह सकते, लाइक नाइस सोलफुल मेलोडियस सॉन्ग. बहुत कम ऐसे अब गाने आते हैं ना जो कि मेलोडी पे फोकस करते हैं. चलिए साथ मिलकर सुनते हैं, इट्स रेखा भारद्वाज, उत्पल उदित एंड ख्वाब इन सीजन 4 ऑफ कोक स्टूडियो भारत. कचौड़ी गली राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Take a break with Ajman Free Zone. Get your business license in one click, starting from only 5,555 dirhams. Big 106.2.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: An experience shaped around you with Fly Dubai. Different paths, different dreams, all shaped by the same moment. This is where every journey becomes a story worth telling. A story that begins with Fly Dubai.
0: The Big Breakfast, brought to you by Jator UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
3: अच्छा खासा हनीमून पीरियड चल रहा है ऑन द रोड आउट देयर. बिल्कुल कहीं पर ज्यादा कोई ट्रैफिक इतना नहीं है कि अब उससे कोई परेशानी हो हमें. बट या 311 पर हेडिंग साउथ, हेडिंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा, हल्का फुल्का ट्रैफिक आपको मिलेगा 2 से 3 मिनट का. देन देयर इज S112 इंडस्ट्रियल एरिया शारजा में, देयर इज ट्रैफिक हेडिंग वेस्ट गोइंग टुवर्ड्स E11 फ्रॉम 311. एंड देन थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको 611 की तरफ ज्यादा मिलेगा. S102 पर शारजा रिंग रोड, S116 मलिया स्ट्रीट पर भी थोड़ा बहुत कंजेशन है. देन देयर इज E44 पर गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3, यू विल फाइंड 2 से 3 मिनट की देर.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: It's a blast from the past. Nachange sari raat. Stereo Nation right here on Big 106.2. Bhai, sari raat hi nahi, sare din bhi nacho. Because we're in the middle of 6 days of free parking run here in Dubai.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Kaise 6 day, yesterday Sunday to of course free parking hoti hai. Aaj Monday se lekar Friday tak all the parking meters and public parking spaces have been deactivated. But don't get too used to it because Saturday se you have to start paying for parking one day and then Sunday ek aur baar to free hota hai. So that's what it is. So Monday se lekar Friday parking is absolutely free. You don't need to pay for parking unless it's a multi-story parking. Wahan par you still have to pay for parking. Also Eid break mein of course the metro ट्रैम बस टाइमिंग्स अभी चेंज तो क्या टाइम्स हैं रूट चेंजेस कुछ हैं तो नहीं इट ऑलवेज इज वर्थ योर वाइल टू चेक आउट दी आरटीए की वेबसाइट एंड ऐप फॉर ऑल दी इन्फॉर्मेशन आउट देयर ईद मुबारक इन एडवांस कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल फ्रॉम धुरंधर दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड गुड मॉर्निंग
1: बिग 106.2

0: क्या?
1: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: एंड टॉक अबाउट मजा ही मजा फ्लाई दुबई के साथ, आप जानते हैं हमेशा मजा ही मजा, बिकॉज यू फ्लाई मोर टू द प्लेसेस दैट यू एब्सोल्युटली लव विद फ्लाई दुबई. द बिग ब्रेकफास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय फ्लाई दुबई, एस्केप इन स्टाइल टू ड्रीमी डेस्टिनेशंस जैसे कि मालदीव्स, कोलंबो, ज़ांज़िबार एंड बियॉन्ड. एंड 23rd ऑफ मे से शुरू हो गया है, यू कैन अनलॉक योर समर विद फ्लाइट्स टू अंतालिया, बटूमी, कॉर्फू एंड मच मोर. एंड 1st ऑफ जुलाई से क्या हो रहा है, यू कैन गो डायरेक्ट टू बैंकॉक थाईलैंड विद फ्लाई दुबई. एलिवेट योर जर्नी विद द कंफर्ट एंड लग्जरी ऑफ फ्लाई दुबई बिजनेस क्लास. एंजॉय मील and entertainment with every Fly Dubai flight. Fly Dubai, one flight, endless stories.
1: Beat 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: It is 8:38 on the clock and it's now time for that thing jo aap har roz intezar karte hain every day in the morning, and that is the big Bollywood quiz, chance for you to win two open movie tickets. Dekho, baaki sare dost aapke plan bana kar nikal liye shehar se, ho sakta hai staycation, vacation, ye sab plans aapke dhare ke dhare reh gaye, so don't worry, I'm going to try and make it a bit worth your while. Yeah, ke do open movie tickets if you can walk away with, and jaakar koi bhi aap movie dekho of your choice at a time of your choosing. Iske liye kya karna hai, bahut hi simple question today, I'm not going to make it difficult. It's a Monday right before the lambi chaudi Eid ki chuttiyan, right? So aaj 25th of May is I think one of the most impactful, greatest kehna to shayad bahut badi baat ho jayegi, it's debatable, but one of the most impactful directors of the modern era, Karan Johar ka aaj birthday hai 25th of May. So main ek aisi film ka scene aapko sunane wala hu. Actually it's like a combination of a couple of scenes जिसमें शाहरुख खान उनको बात बात पे टपली मार के उनकी टोपी उड़ा देते हैं। सो इसको सुनिए, बताइए कौन सी फिल्म में ये हो रहा होता है।
3: यूरोप का टिकट बुक करा लिया और तुझे मेरे साथ चलना, बस
4: मैं नहीं आ सकता।
5: डैड मुझे कभी आने नहीं, मुझे यहाँ बहुत काम
3: है। ए, इतने सालों से तू मुझे जानता है, एक मामूली सा बहाना नहीं बना सकता।
5: अरे बाबा
3: इदी यार,
5: नहीं मिलने वाली।
3: ए डफर
2: डफर कौन सी मूवी में शाहरुख खान करण जौहर को कहते हैं? इज एक्टिंग इन द मूवी, इज नॉट डायरेक्टिंग इट। इफ यू नो द करेक्ट आंसर गिव मी अ कॉल राइट नाउ 800-1062 पर। कौन सी शाहरुख खान मूवी में शाहरुख खान करण जौहर की बात बात पर टपली मार के टोपी उड़ा देते हैं? 800-1062 टू विन टू ओपन मूवी टिकट्स। पति पत्नी और वो दोस्त से दिस सॉन्ग कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल। हमने वहीं दिल लगाया जहां पर मना था। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेड।
1: With Ajman Free Zone, get your business license in one click, starting from only 5,555 dirhams. Big 106.2. The Big Breakfast, brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
6: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com. And we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
7: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: The Big Mix. Weekdays, 10 a.m. to 2 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
2: Good morning, it's 8:42 on the clock on this Monday ki subah. Let's take a look sabse pehle at 311 heading south going towards Dubai from Sharjah Industrial Area 15 par. Wahi 2 se 3 minute ki der, nothing much to be worried about. Then there's S112 pe Industrial Area 6 se going towards E11 heading west, you'll find a bit of congestion. And अलनादा एरिया में हल्का फुल्का ट्रैफिक। इंडस्ट्रियल एरिया 7 में इन शारजा ऑल्सो यूल फाइंड अलनादा इंटरचेंज 1 पे ऑन 311 और सॉरी ऑन 11 यूल फाइंड बिट ऑफ साउथ बाउंड ट्रैफिक गोइंग टूवर्ड दुबई फ्रॉम शारजा। यूजुअल D3 गोइंग टूवर्ड बिजनेस पे 44 पर भी 2-3 मिनट की देर। द गुड न्यूज इज 611 इज एब्सोल्युटली कंजेशन फ्री। आज अरेबियन रांची में भी थोड़ी बहुत कंजेशन आपको मिलेगी 2-3 मिनट की देर 311 पर going towards Motor City. Iske alawa, in case you spot something, give me a call 800-1062 par.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: from the film Nadania, that is Tere Ishq Mein. This is Big 106.2.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: And I've got Pooja with me on the phone line. And Pooja is standing inside a hospital right now because unke bachche ka adenoid removal surgery chal raha tha aur Pooja mummy bahar khade rehke kya kar rahi hai, radio sun rahi hai. Pooja, good morning. That is very responsible behavior. Thank you very much.
2: Good morning Sid, kaise hain aap?
0: Bil, are mera chodiye, aap bataiye ki aapke bete kaise hain? Is the surgery still on or is it over? Kya hua?
2: Beta nahi, beti ki hui hai surgery to.
0: Haan.
2: अभी ठीक है, अच्छी हुई है सर्जरी.
0: मुझे पक्का याद है कि लास्ट टाइम आपने बेटा कहा था. देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू.
2: नहीं नहीं, मैंने बेटा, मेरा छोटा है बेटा, अभी 9 मंथ का है. बेटी अभी 3.5 साल की हुई है, 3.5 साल की उसकी बेटी की सर्जरी हुई है.
0: सो हो चुकी सर्जरी, डॉक्टर ने कह दिया सब कुछ ठीक ठाक है?
2: हो गई सर्जरी, हो गई, डॉक्टर से बात हो रही है, सब कुछ ठीक हुआ है.
0: हो रही है,
2: हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, सर्जरी हो चुकी है. डॉक्टर अभी अभी आए हैं बाहर.
0: आई कैन हियर द डॉक्टर इन द बैकग्राउंड.
2: नहीं नहीं, हाँ डॉक्टर बात कर रहे हैं मेरे हस्बैंड से ना.
0: हस्बैंड बात कर रहे डॉक्टर से और ये मेरे साथ बात कर रहे हैं. I wish I had like some gold medal or something to give to the most devout listener of radio in the whole world. मुझे बहुत अरसा हो गया पता है रेडियो पे बात करते हुए, लेकिन आपसे ज्यादा शिद्दत मुझे कहना पड़ेगा.
2: टेंशन वाले टाइम पर ना खुश खुश रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, टेंशन में रह के और टेंशन बन जाती है.
0: दिस इज सच अ गुड स्ट्रेटजी, यू नो, जब टेंशन हो जाता है लाइफ के अंदर, कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या हो रहा होता है, सो हम ही आपके काम आते हैं. दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी. वेरी गुड,
2: सही बोला है आपने. ये सच में आप लोग बहुत काम आते हैं, आप लोग हम लोग को इतना खुश रखते हैं ना. कभी कभी जब हम लोग बहुत प्रेशर में और टेंशन में होते हैं, मैं तो FM सुन के ही अपना टाइम पास करती हूँ और खुश हो जाती हूँ.
0: हम ये टाइम पास की भी वैल्यू होती है, टाइम पास की भी वैल्यू होती है, ये सब लोग सुन लो ठीक है. जितने भी लोग सोच रहे हैं रेडियो रेडियो सिर्फ टाइम पास होता है, टाइम पास इज वेरी वैल्यूएबल. बट पूजा चलो यार,
2: तभी तो इनाम भी मिल रहे हैं ना, प्राइज भी जीत रहे हैं.
0: प्राइज तो आपको, आप मेरे को मन नहीं, मन कर रहा है कि मैं आप सवाल ही ना पूछूं, ऐसी प्राइज दे दूं. आप इतना मजा आ गया आपसे बात करके, लेकिन लेकिन क्या करूं, पूछना पड़ेगा. देयर इज अ सीन जो मैंने पिछली बार आपको सुनाया, करण जौहर का बर्थडे है आज. के कौन सी SRK फिल्म में करण जौहर की वो हमेशा टोपी उड़ाते रहते हैं टपली मार के? एंड द करेक्ट आंसर इज
2: DDLJ.
0: एब्सोल्युटली.
2: कल ही देखी है मूवी मैंने.
0: कल क्या?
2: कल ही देख रही थी.
0: ओ, सो वो सर्जरी से पहले का टेंशन आपका हो, लेट मी गेस, सर्जरी से पहले का टेंशन आपका हो रहा होगा. आपने कहा कि टेंशन दूर करने क्या करूं, चलो कुछ DDLJ देख लेती हूं मैं. Am I right?
2: एक्चुअली बेटी के लिए लगा के रखी थी, बेटी को देखने में मजा आ रहा था तो मैं भी देख रही थी.
0: एक मिनट, कहानी में ट्विस्ट. बेटी आपकी 9 महीने की है?
2: नहीं नहीं नहीं, बेटा मेरा 9 महीने का है, 3.5 साल की मेरी बेटी है, उस बेटी की सर्जरी हुई है.
0: अच्छा, बेटी के टाइम पास के लिए आपने DDLJ लगाया, फिर ठीक है, फिर ठीक है. 3.5 साल की बेटी इज एंजॉयिंग DDLJ.
2: हाँ, वो देखने लग जाती है, उसको समझ में नहीं आता, लेकिन वो टीवी देखती है तो वो टीवी देख के खुश होती है.
0: आर यू लाइक अ फरीदा जलाल काइंड ऑफ मदर और आर यू अमरीश पुरी?
2: मैं पूजा हूँ, पूजा ही हूँ.
0: सच बताओ पूजा, आर यू जीले अपनी जिंदगी टाइप या फिर
2: जी
0: ली अपनी जिंदगी वाली? चलो सही है पूजा, कंग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिए 2 open movie tickets इन द बिग बॉलीवुड क्विज. आई डोंट थिंक, जितने भी लोग कॉल कर रहे थे, एवरीबॉडी इज कन्विंस्ड, आई एम वेरी श्योर कि पूजा से ज्यादा डिजर्विंग आज सुबह कोई भी नहीं है टू विन दीज पासेस. ओके,
2: थैंक यू सो मच,
0: कंग्रेचुलेशंस कि द ऑपरेशन वेंट वेल, एंड प्लीज विश योर डॉटर फ्रॉम ऑल ऑफ अस एंड ऑल ऑफ आवर लिसनर्स एज वेल एट बिग 106.2. ठीक है,
2: थैंक यू.
0: अब कोई प्लान है ईद के? हाउ लॉन्ग इज द रिकवरी प्रोसेस? चलो ठीक है यार, एंजॉय योरसेल्फ. एंड ईद की छुट्टियों की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट बिग 106.2. दैट इज पूजा, हमारी आज की विनर है. डोंट फॉरगेट, रोज सुबह ये मौका टू फ्लेक्स अ बिट ऑफ योर बॉलीवुड मसल एंड वॉक अवे विद 2 open movie tickets इन द बिग बॉलीवुड क्विज.

0: चलो ठीक है यार, एंजॉय योरसेल्फ एंड ईद की छुट्टियों की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट बिग 106.2. दैट इज पूजा हमारी आज की विनर है. डोंट फॉरगेट, रोज सुबह ये मौका टू फ्लेक्स अ बिट ऑफ योर बॉलीवुड मसल एंड वॉक अवे विद टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज.
1: Carnival, the last ride.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 101.2 The Beat of Bollywood. Take a break with Ajman Free Zone. Get your business license in one click, starting from only 5,555 dirhams. Big 106.2.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ दो घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर.
0: द बिग ब्रेकफास्ट brought to you by Jator UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding. Listen to her every day.
4: Mugembo! खुश हुआ.
5: चलो वीकेंड पे देखेंगे धुरंधर 2 या फिर यू विल गो होम टुडे एंड जस्ट फिनिश इट.
6: नहीं आज ही देख लेंगे यार, आज ही. आई एम वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम.
5: सो यू डोंट हैव वर्क टुमारो?
6: आई हैव, बट ये देखना जरूरी है.
5: जरूरी है मतलब ऐसे इमरजेंसी नहीं हुई हुई है कोई की, जरूरी है आज ही देखना. नेटफ्लिक्स का अकाउंट अगर आपने पैसे भरे हुए तो रहेगा आपके पास, आप कल भी परसों भी देख सकते हो.
6: सो वी विल वेटिंग टू सी इट.
5: या आई मीन आई हैव इमेंस सेल्फ कंट्रोल. आई कैन गिव अप ऑन कार्ब्स एंड आई कैन आल्सो गिव अप ऑन द टेम्पटेशन ऑफ वॉचिंग द मूवी टुनाइट बिकॉज आई वांट लाइक माहौल. आई एम वॉचिंग धुरंधर 2. आई वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट 6 टाइम्स. तो मैं माहौल के साथ देखना चाहती हूँ, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग. मतलब अंधेरा अंधेरा करके पॉपकॉर्न ऑर्डर करके. फिलहाल शेल्डन, व्हाट डू यू डू?
6: आई एम एन ऑपरेशंस ट्रेनर.
5: ओह वेरी नाइस. आई डिडंट अंडरस्टैंड बट साउंड्स वेरी फैंसी.
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Morning is the Monday right before the big Eid break and kahan kahan par traffic hai? Kahin bhi nahi. Answer is kahin bhi nahi hai. Everywhere is smooth flowing traffic, especially compared to other weekdays, other Mondays. So 3:11, 2-3 minute ki der heading south. Going towards Dubai from Sharjah, ये भी कोई traffic situation हुआ. 44 going towards Business Bay from D3 also, you'll find this similar. 2-3 minutes का delay. In case you spot something, give me a call. 800-1062 पर.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

मैं वापस आऊंगा इम्तियाज अली की ये फिल्म. इम्तियाज अली हैज कम वापस विद ए आर रहमान एंड बिट ऑफ या दिलजीत दोसांझ एज वेल आफ्टर देयर लास्ट प्रोजेक्ट. देखते हैं कि ये फिल्म कैसी है. बट दिस इज बिग 106.2 कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. अगला बिट ऑफ पसूड़ी आन जान दी पसूड़ी नू. And don't forget, the show is brought to you by Jetour. If you're ready for a serious SUV upgrade, check out the latest deals from Jetour. Drive home a brand new Jetour with 0% VAT-free insurance, 0% interest on select models, and the big one, 1 million kilometers ki warranty. And the best part is you can buy now and start paying after 6 months. 6 months ke baad payment shuru hogi. Your dream SUV could be yours with EMI starting just 966 dirhams a month. Head to Jetour showrooms in Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Al Ain, and take it for a spin today. Jetour UAE, part of the Elite Group Holding. T's and C's do apply.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: Big 106.2, the beat of Bollywood. Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News.
1: Neil Nunes. The Democratic Republic of Congo, Uganda and South Sudan have adopted a joint plan to counter the spread of Ebola. It includes improved border monitoring and protection for frontline workers. The WHO says there are more than 900 suspected Ebola cases. Oil prices have plunged more than 5% on Asian markets as investors hope for a deal to end the U.S.-Iran war. The drop comes despite comments by President Trump urging U.S. negotiators not to rush into an agreement. The Roman Catholic Church has asked for forgiveness from a rural community in Peru over harassment and evictions by a Catholic group. Locals say companies linked to the group seized thousands of hectares of land. Inmates have rioted in Venezuela's Barinas Penitentiary, demanding the resignation of its director. They claim they have been subjected to human rights abuses. Candidates standing in Colombia's presidential election have ended their campaigns with a promise to boost security. Abelardo de la Espriella, a right-wing lawyer, said he would take a harder line against criminal groups than the current leftist president Gustavo Petro. A Taliban spokesman has told the BBC the group is committed to granting Afghan women their rights under Islamic law, 5 years after barring them from education. He gave no clear answer on when or whether education for women would return. Firefighters in Southern California have discovered a crack in a massive tank filled with a toxic chemical. It could potentially ease the pressure inside and lower the risk of a catastrophic explosion. And Las Vegas is hosting the first Enhanced Games, where athletes are allowed to use performance-enhancing substances, including testosterone. BBC World News.
0: Fan Network News from the BBC. Henna Speedy Hair Color, your quick fix solution for changing back the lost colors of your hair in just 7 minutes. Big 106.2.
2: जब वो चले तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बीत जाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा आई लव यू.
0: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग. इट्स अ ब्रांड न्यू वीक एंड जिन लोगों की मतलब छुट्टी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है उनको तो मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है. ब्रांड न्यू वीक, यू जस्ट हैव टू से हैप्पी हॉलीडेज ऑलरेडी बिकॉज यस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गोइंग टू वर्क. बट जिन लोगों का ये आज एक लौता वर्किंग डे है उन लोगों को यस, सो वेलकम. कोई बात नहीं यार, हम हैं सारे मजदूर साथ में बैठे हैं एंड वील मेक श्योर दैट वी हैव अ गुड टाइम मेकिंग श्योर वी ब्रिंग यू द बेस्ट एंड द हॉटेस्ट ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक. उसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस भी यार. आई जस्ट स्पोक टू सिर अबाउट दिस. इतना बुरा लगता है ना, इतना मतलब मेहनत करके आप एक नाम बनाओ और कोई आपको किसी और नाम से बुला दे या कुछ और टैग दे दे. इट्स जस्ट रियली बैड एंड ऑल्सो एम्बेरसिंग फॉर द अदर पर्सन जिनको इन्फॉर्मेशन है ही नहीं आपके बारे में डिस्पाइट यू मेकिंग दैट बिग नेम. वी बी टॉकिंग अबाउट दैट इन जस्ट अ बिट राइट ऑन बिग 106.2. वी आर पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क. यू आर विद मी ज़ोहरा ऑल द वे अंटिल 1.

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली
1: बिग 106.2 Early in the morning, the Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Jetour UAE, part of Elite Group Holding, and Fly Dubai. Now listen to your favorite songs on repeat without any interruption. Download the Big Fan app for unlimited song selection. Available on iOS and Android.
2: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
3: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आगे पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: Beat 106.2, the beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
3: बड़े ही चिल सीन ऑन द रोड्स टुडे, क्योंकि लोग जो है स्मार्ट काम कर चुके हैं, छुट्टियों पे अपने ऑलरेडी जा चुके हैं। एक मंडे क्या ही करना है काम पे जाके, आप कितने ही डेडलाइंस मैच कर लोगे। सो गुड गुड न्यूज़, इफ़ यू आर ड्राइविंग टुडे देन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी लाइट ऑन द रोड्स एंड ईजी गोइंग। ट्रैफिक कहीं पर भी नहीं है, थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिलेगा E44 रासलखोर रोड पे, दिस इज़ गोइंग टूअर्ड्स अल खैल, ऑल्सो D3 वाले एग्जिट के पास है, गोइंग टूअर्ड्स बिजनेस बे आपको मिल सकता है लाइट ट्रैफिक, 5 से 6 मिनट का वहाँ पर डिले है। एंड D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट इज ऑल्सो शोइंग लाइट say motor traffic about a 5-minute delay on that road as well. Any other update, let us know on 4305.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big. Woo! Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

92.2. Yes, that's right. This is Big 106.2, the beat of Bollywood. You're with me, Zohra, until 1. Good morning. अगले घंटे हम बात करने वाले about something very interesting. Cinema जाते हैं हम movie देखने के लिए, है ना? बहुत बार ऐसे होता है कि movie चल रही होती है but हमें, you know, urgent business के लिए निकलना होता है cinema से बाहर. But we feel like, yeah, we don't want to miss out on it. So हम अपने दोस्तों को बोलकर चले जाते हैं, please, please fill me in when I come back. हाँ, मुझे बताना क्या हुआ. कुछ अच्छे दोस्त होते बता भी देते हैं, कुछ बड़े ही बेकार दोस्त होते हैं जो बोलते हैं, अरे मुझे भी नहीं पता क्या हुआ. जब ऐसी दुर्घटना में आप फंस जाते हो, ऐसे संकट में आप फंस जाते हो, तब इसका कोई सोल्यूशन अगर निकाल दे, मतलब द प्लेस इटसेल्फ, द कंट्री इटसेल्फ हैज डिसाइडेड कि हम इस चीज़ का सोल्यूशन निकालेंगे, देन मतलब हाउ थैंकफुल एंड हाउ ग्रेटफुल वुड यू बी टू देम. इसके बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट आवर. यू विद मी ज़ोहरा ऑल द वे अंटिल 1 ऑन द बिग मिक्स. वेरी गुड मॉर्निंग. Yeah.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए GoChat कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: Sunita Gandhi with Nana right here on Big 106.2. This is the beat of Bollywood.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Who said this was a bad idea? I honestly think it's a great idea. मतलब whoever came up with this solution, good job, yeah. Because बहुत सारे movie lovers हैं ऐसे जिनको एक second भी miss करना पसंद नहीं है. Now Bollywood movies, you know, interval आ जाता है बीच में, so you know there's a break, there's a gap. You can go to the washroom, buy yourself a snack, make that phone call. मिल जाता है time. Hollywood movies on the other hand, नहीं मिलता, right? There are no intervals in those movies. And आजकल तो Hollywood movies भी लंबी बनने लगी हैं. धुरंधर types है ना, 4 घंटे की, 3.5 घंटे की. And you know you have to sit through all those 3.5-4 hours. But अगर आपको अर्जेंटली वॉशरूम जाना है तो आप क्या करोगे? यू कांट डू एनीथिंग, यू हैव टू स्टेप आउट. आप बोलकर चले जाते हो अपने दोस्तों को, यार फिल्म ही इन, प्लीज बता देना क्या हो रहा है यहाँ पे. कुछ अच्छे दोस्त होते हैं जो बता देते हैं, कुछ ऐसे बेकार से दोस्त होते हैं जो खुद सो रहे होते हैं, जिन्हें खुद नहीं पता होता क्या हो रहा है. सो यू मिस आउट ऑन दोज, यू नो, 4-5 minutes ऑफ व्हाटएवर टाइम यू हैव गॉन टू द वॉशरूम. सो स्विट्जरलैंड केम अप विद अ सॉल्यूशन कि वॉशरूम में, जो पब्लिक वॉशरूम्स है, जो रेस्टरूम्स है, उन स्टॉल्स में नीचे फ्लोर पे स्क्रीन्स लगाए जाएंगे और उन स्क्रीन्स पे मूवीज डिस्प्ले की जाएंगी. नाउ लॉट ऑफ पीपल से कि दिस इज सो अननेसेसरी, आप 4-5 मिनट के लिए जा रहे हो, कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना. बट अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट दिस इज ब्रिलियंट. इवन दो मोस्ट ऑफ द टाइम उन स्क्रीन्स पे एड्स चल रहे होते हैं, समटाइम्स इट प्लेज द मूवीज दैट आर करंटली रनिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दिस इज ग्रेट सो दैट वी डोंट मिस अ सिंगल सेकेंड ऑफ एक्शन. हम फटाफट से वापस भी जा सकते हैं, कुछ मिस नहीं हुआ है. बट सम पीपल आर नॉट इन अग्रीमेंट ऑफ इट एंड दे फील लाइक यार ये जरूरी ही नहीं है. यार तुम क्या समझोगे मूवी लवर्स का प्यार, तुम लोग क्या समझोगे? हमारे लिए एक एक सेकेंड मैटर करता है, वी डोंट वॉन्ट टू मिस. बट एट द सेम टाइम दिस इज समथिंग दैट वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन. अर्जेंट था मामला. सो आई फील लाइक दिस इज अ ब्रिलियंट सोल्यूशन. वट डू यू हैव टू से? डू यू थिंक दी स्क्रीन्स, अगर लेट्स से ये इनोवेशन यहाँ पर आ जाता है, डू यू थिंक दैट इट्स समथिंग दैट यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, लाइक ग्रेट, नाउ इवन इफ आई वांट टू गो आई वोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग? और यू फील लाइक यार चिल आउट अ लिटिल बिट, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. क्या लगता है आपको? बताओ मुझे 800-1062 पे. दिस इज द बिग मिक्स विद मी ज़ोरा.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: Listen to her every day.
5: Mugembo! खुश हुआ।
6: शेल्डन वीकेंड पे देखेंगे धुरंधर 2 या फिर यू विल गो होम टुडे एंड जस्ट फिनिश इट?
7: नहीं आज ही देख लेंगे यार, आज ही। आई एम वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम।
6: सो यू डोंट हैव वर्क टुमारो?
7: आई हैव, बट ये देखना जरूरी है।
6: जरूरी है मतलब ऐसे इमरजेंसी नहीं हुई हुई है कोई के, जरूरी है आज ही देखना। नेटफ्लिक्स का अकाउंट अगर आपने पैसे भरे हुए तो रहेगा आपके पास, आप कल भी परसों भी देख सकते हो।
7: So we will waiting to see it.
6: Yeah, I mean I have immense self control. I can give up on carbs and I can also give up on the temptation of watching the movie tonight because I want like mahol. I'm watching Dhurandhar 2. I watched the first part almost 6 times. तो मैं माहौल के साथ देखना चाहती हूँ, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मतलब अंधेरा अंधेरा करके पॉपकॉर्न ऑर्डर करके। फिलहाल शेल्डन व्हाट डू यू डू?
7: आई एम एन ऑपरेशंस ट्रेनर।
6: ओह वेरी नाइस, आई डिडंट अंडरस्टैंड बट साउंड्स वेरी फैंसी।
2: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद नॉन्सी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
9: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। नाउ लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स ऑन रिपीट विदाउट एनी इंटरप्शन। डाउनलोड द बिग फैन ऐप फॉर अनलिमिटेड सॉन्ग सिलेक्शन, अवेलेबल ऑन iOS एंड Android।

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Hi, I'm Neha. Honestly, मुझे old gold exchange करने में हमेशा थोड़ी hesitation होती है। मेरा concern था, क्या मुझे correct value मिलेगा? कहीं hidden deductions तो नहीं होंगे? मैंने तनिष्क ट्राई किया, purity check हुई and everything was explained. No hidden charges, no last minute surprises. I got 20 dirhams extra per gram on exchange of my old gold. और मैंने अपने लिए beautiful diamond jewelry भी खरीदी.
3: Visit your nearest Tanishq store today.
1: Big 106.2.

Arthur on the lead, Senorita gaane ka naam on the big mix. We're heading into the last hour of the show and something very, very weird that I have to talk about. Like Instagram pe jo jo cheeze mujhe milti hai, kabhi kabhi I just feel like maine kya dekh liya aur kyun dekh liya aur ye kaun log hai jo aisi baatein karte hai. So weird professions is duniya mein bahut hai, hai na, very weird professions. You feel like yaar ye karne ke logon ko paise milte hain? Haan, milte hain and kaafi log aise business bana chuke hain aur aajkal log itne woke hoke ghoom रहे हैं दैट एनी थिंग दैट यू टेल देम यू नो दैट साउंड्स अ लिटिल फैंसी पीपल विल इंस्टेंटली फॉल फॉर इट. ये जनरेशन इतनी मतलब ईजिली मैनिपुलेटेड गलेबल जनरेशन है. नॉनदलेस ऐसा मैंने प्रोफेशन कौन सा देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया दैट हैज लिटरली शेकन मी अप. आई विल टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ बिट. लेट्स कंटिन्यू अच्छे अच्छे गानों का सिलसिला यहाँ पे. दिल दिल कमिंग अप नेक्स्ट. निधि चौहान ऑन द लीड, यू विद मी ज़ोहरा, एक और घंटे के लिए अंटिल 1.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae.
0: Missed your morning buzz? ये सुनो,
2: पूजा इज स्टैंडिंग इनसाइड अ हॉस्पिटल राइट नाउ बिकॉज उनके बच्चे का एडेनॉइड रिमूवल सर्जरी चल रहा था और पूजा मम्मी बाहर खड़े रहकर क्या कर रही है, रेडियो सुन रही है. पूजा, गुड मॉर्निंग, दैट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, थैंक यू वेरी मच. सो हो चुकी सर्जरी, डॉक्टर ने कह दिया सब कुछ ठीक ठाक है?
3: हो गई सर्जरी, हो गई, डॉक्टर से बात हो रही है, सब कुछ ठीक हुआ है.
2: हो रही है,
3: हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है. डॉक्टर अभी आए हैं बाहर.
2: आई कैन हियर द डॉक्टर इन द बैकग्राउंड.
3: नहीं नहीं, हाँ डॉक्टर बात कर रहे हैं मेरे हस्बैंड से ना.
2: हस्बैंड बात कर रहे डॉक्टर से और ये मेरे साथ बात कर रहे हैं. I wish I had like some gold medal or something to give to the most devout listener of radio in the whole world.
3: Tension wale time par na khush rehna zyada pasand karte ho, tension mein rehke aur tension ban jati hai.
2: This is such a good strategy, you know. Jab tension ho jata hai life ke andar, kuch aisa samajh mein nahi aa raha life mein kya ho raha hota hai, so hum hi aapke kaam aate hain. This is a very good strategy. Very good.
3: Bilkul sahi bola aapne, ye sach mein aap log bahut kaam aate hain. Aap log hum log ko itna khush rakhte hain na. Kabhi kabhi jab hum log bahut pressure aur tension mein hote hain, main to FM sunke hi apna time pass karti hu aur khush ho jati hu.
0: Energy and action Monday to Friday 6 AM to 10 AM. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: I don't know what to say anymore. ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, कौन है ये लोग, एंड इन लोगों की बातों पे यकीन करने वाले लोग कहाँ मिलते हैं, ये लोग कौन हैं, और ये मतलब I fail to understand that people like this exist. Okay, so I'm gonna first make you listen to this one clip, ठीक है? एक content creator है जिनका मैंने ये post देख लिया. It was a rant video where she's talking about her conversation with another friend and what she does for a living, उनके profession, उनके career को लेके. And it just baffles me that ऐसे लोग exist करते हैं जो इन चीज़ों को seriously लेते हैं. पहले ये clip सुनो, ठीक है?
2: भाई चल क्या रहा है अमीरों की दुनिया में. So I met a girl in Goa and I asked her what she does and she said she's a hair whisperer. I was like, oh भाई आपको ये आप लोगों के बालों के साथ कानाफूसी करती है. So she is basically a hair stylist who directly talks to your hair, not you, your hair, and asks your hair how it wants to be cut. She senses your hair's energy and senses why it's falling, why it's malnourished, why it's damaged, and then gives you a haircut accordingly. And here is the catch, my friends. Her consultancy fees is 5,000. 5,000 में सिर्फ consultation होगा, बालों से बातचीत होगी, haircut नहीं होगा 5,000 में.
1: Oh my God! Hair whisperer is an actual profession that I found out today. I was today years old when I found out ki aaj kal aisa ek profession bana hua hai. Someone can whisper to your hair and just talk to your hair and figure out how it's feeling. Like aapki baat kya hoti hogi baalon ke saath, kaise feel kar rahe ho, kya chal raha hai aajkal life mein aapke, what, how, what. I think इसके बाद अगर लोग ऐसी चीज़ों में बिलीव करते हैं, लोग एक्चुअली कंसल्टेंसी फीस इस चीज़ के लिए पे करने को विलिंग है, आई थिंक आई एम गोना मेक अप अ फेक प्रोफेशन ऑफ माई ओन एज वेल. नॉट रियली फेक, मैं रियल प्रोफेशन बनाऊंगी, बट इट विल बेसिकली बी समथिंग दैट आई थिंक आई एम गुड एट, है ना. मैं सेंस कर सकती हूँ वेन समवन इज स्ट्रेस्ड एंड वेन समवन डेस्परेटली नीड्स अ चाय. आई एम गोइंग टू बिकम चाय विस्परर. तो मैं जाऊँगी, विस्पर करूँगी आपके कानों में चाय की चुस्की, ऐसे करूँगी ताकि आपको वो यू नो कामनेस आ जाए, जैसे आपने चाय पी ली हो, फीलिंग आ जाए आपकी. उसके लिए मैं 5,000 चार्ज करूँगी. एक्चुअली स्क्रैच दैट, चाय तो आजकल किसी को पसंद ही है नहीं, आजकल के बच्चों को माचा पसंद है. मैं बनूँगी माचा विस्परर. एंड कैन आई टेल यू, आई विल मेक सो मच मनी फॉर दैट.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
4: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
5: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Missed your morning buzz?
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
2: ये सुनो,
4: पूजा is standing inside a hospital right now because उनके बच्चे का adenoid removal surgery चल रहा था और पूजा मम्मी बाहर खड़े रह के क्या कर रही है, रेडियो सुन रही है। पूजा गुड मॉर्निंग, दैट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, थैंक यू वेरी मच। सो हो चुकी सर्जरी, डॉक्टर ने कह दिया सब कुछ ठीक ठाक है?
5: हो गई सर्जरी, हो गई, डॉक्टर से बात हो रही है, सब कुछ ठीक हुआ है।
4: हो रही है,
5: हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। डॉक्टर अभी आए हैं बाहर।
4: आई कैन हियर द डॉक्टर इन द बैकग्राउंड।
5: नहीं नहीं, हाँ डॉक्टर बात कर रहे हैं मेरे हस्बैंड से ना।
4: हस्बैंड बात कर रहे डॉक्टर से और ये मेरे साथ बात कर रहे हैं। I wish I had like some gold medal or something to give to the most devout listener of radio in the whole world.
5: Tension वाले time पर ना खुश खुश रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, tension में रहके और tension बन जाती है।
4: This is such a good strategy, you know. जब tension हो जाता है life के अंदर, कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा life में क्या हो रहा होता है, so हम ही आपके काम आते हैं। This is a very good strategy.
5: बिल्कुल सही बोला आपने, ये सच में आप लोग बहुत काम आते हैं। आप लोग हम लोग को इतना खुश रखते हैं ना, कभी कभी जब हम लोग बहुत प्रेशर में और टेंशन में होते हैं, मैं तो FM सुन के अपना टाइम पास करती हूँ और खुश हो जाती हूँ।
2: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM, The Big Breakfast with Sid, only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
6: Hey, जल्दी हटा, तेरा खटा ना, चल हटा।
7: हाँ,
6: अरे जल्दी हटा, सुन
7: ना। हाँ।
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: बड़े ही चिल सीन ऑन द रोड्स टुडे, क्योंकि लोग जो है स्मार्ट काम कर चुके हैं, छुट्टियों पे अपने ऑलरेडी जा चुके हैं। एक मंडे क्या ही करना है काम पे जाके, आप कितने ही डेडलाइंस मैच कर लोगे। सो गुड गुड न्यूज़, इफ़ यू आर ड्राइविंग टुडे देन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी लाइट ऑन द रोड्स एंड ईजी गोइंग। ट्रैफिक कहीं पर भी नहीं है, थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिलेगा E44 रासलखोर रोड पे, दिस इज़ गोइंग टूअर्ज अल खेल, ऑल्सो D3 वाले एग्जिट के पास है, गोइंग टूअर्ज बिजनेस बे आपको मिल सकता है लाइट ट्रैफिक, 5 से 6 मिनट का वहाँ पर डिले है। एंड D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट इज ऑल्सो शोइंग लाइट, say moderate traffic, about a 5-minute delay on that road as well. Any other update, let us know on 4305.
2: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

0: Call or WhatsApp 800-ALFRED. Renewing your registration? Don't forget your insurance first. InsuranceMarket.ae.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Yo-Yo Honey Singh with brown rang, exactly the color that Ujwal is wearing in the studios today, and his face is matching brown.
1: I like brown rang. It's got such tan.
0: Why is your face brown today?
1: Because in and out of the sun does that to you.
0: But you should be used to that by now.
1: नहीं मेरे को लगता है कि हम भी थोड़े से पोले हो गए हैं दुबई में रह रहे
0: हैं.
1: पोले मतलब थोड़े से नाजुक टाइप के.
0: छुईमुई.
1: हाँ मतलब अंदर बाहर से I think the sun sort of sets on you.
0: वो तो मैं हूँ ही pampered princess.
1: But important ये है कि तेरे लिए भी और सबके लिए भी जो लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं कि एक घंटा प्लीज रज के वर्कआउट करो वो बहुत जरूरी है.
0: और यहाँ का फेक वर्कआउट नहीं एसीओ में.
1: वो 15 degree वाला नहीं. इससे अच्छा तो फिर रहने ही दो. कूलर के अंदर बैठ के वर्कआउट कर लो फिर तो.
0: आई डिडंट नो दिस यू नो. इट वाज अ फैक्ट. आई मीन अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी दैट यू कांट वर्कआउट विद लाइक एसी ब्लास्टिंग
1: बिकॉज़ उसका पॉइंट नहीं है. आउट हां
0: मुझे नहीं पता था.
1: व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वर्कआउट. पसीने नहीं आ रहे तुम्हारे. कुछ नहीं हो रहा. तुम बस ऐसे ही दौड़ रहे हो अपने इंस्टाग्राम पैप्स के लिए.
0: बड़ी अच्छी एडवाइस दी है कि इस लॉन्ग वीकेंड अपने पसीने बहाओ बस. और कोई एडवाइस नहीं है. मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन आवर सोशल सो दैट यू आर अप टू डेट विद एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग दिस ईद ब्रेक. ज़ोहरा अमीन मेरा हैंडल है. डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस 106.2 बिग एफएम पे भी. And just keep listening because we play you the best and the hottest of Bollywood music. This is Big 106.2. We are the beat of Bollywood.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
1: BBC News with Neil Nunes. The Democratic Republic of Congo, Uganda and South Sudan have adopted a joint plan to counter the spread of Ebola. It includes improved border monitoring and protection for frontline workers. The WHO says there are more than 900 suspected Ebola cases. Oil prices have plunged more than 5% on Asian markets as investors hope for a deal to end the U.S.-Iran war. The drop comes despite comments by President Trump urging U.S. negotiators not to rush into an agreement. The Roman Catholic Church has asked for forgiveness from a rural community in Peru over harassment and evictions by a Catholic group. Locals say companies linked to the group seized thousands of hectares of land. Inmates have rioted in Venezuela's Barinas Penitentiary, demanding the resignation of its director. They claim they have been subjected to human rights abuses. Candidates standing in Colombia's presidential election have ended their campaigns with a promise to boost security. Abelardo de la Espriella, a right-wing lawyer, said he would take a harder line against criminal groups than the current leftist president Gustavo Petro. A Taliban spokesman has told the BBC the group is committed to granting Afghan women their rights under Islamic law, 5 years after barring them from education. He gave no clear answer on when or whether education for women would return. Firefighters in Southern California have discovered a crack in a massive tank filled with a toxic chemical. It could potentially ease the pressure inside and lower the risk of a catastrophic explosion. And Las Vegas is hosting the first enhanced games where athletes are allowed to use performance-enhancing substances, including testosterone. BBC World News.
0: Fan Network News from the BBC. Henna Speedy Hair Color, your quick fix solution for changing back the lost colors of your hair in just 7 minutes. Big 106.2.
2: कहाँ से शुरू करूँ? बस इतना समझ लो कि उस जैसा मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं. कभी वो मासूम है तो कभी शैतान.
0: When the afternoon slows down, he speaks of love, life and light. The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है आपके? बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ आप सुन रहे हैं द बिग लाइव. कोई सुन भी रहा है या सब निकल लिए? हेलो हेलो, कोई है? गिव मी अ कॉल ऑन 800-106-2. आई होप दैट आई एम नॉट टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड आई होप दैट पीपल हु आर लिसनिंग टू अस. बहुत सारे लोग चले गए हैं, मतलब फॉर दिस लॉन्ग ब्रेक, बट बहुत सारे लोग हैं भी. सो आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, जस्ट वेरीफाई इफ यू आर लिसनिंग टू अस और नॉट. आफ्टरनून टाइम, सम ग्रेट म्यूजिक, वी आर ऑल सेट फॉर अ लॉन्ग वीकेंड. नॉट लॉन्ग वीकेंड, लॉन्ग ब्रेक फॉर 4-5 डेज. क्या प्लान्स है, क्या होने वाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपने अपना डे बाई डे कैलेंडर सेट कर लिया, लाइक ए दुबई कैलेंडर, देन ऑफ कोर्स इट विल बी अ स्मूथ सेल फॉर यू एंड फॉर व्हाट एवर यू वांट टू गेट इनटू. लेट्स किक स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रैक ऑफ द आवर. वी विल टॉक मोर अबाउट दिस. साइबो श्रेया घोषाल की आवाज में द सॉन्ग्स आर सेट, द आफ्टरनून मूड इज ऑल्सो सेट. उज्ज्वल खन्ना के साथ बिग 106.2 पे वी आर अ पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Drive home a brand new Jetor with zero VAT and EMIs starting from just 966 dirhams per month. Buy now and pay after 6 months. T's and C's apply.
1: Big 106.2, the beat.

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
2: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: श्रेया घोषाल के आवाज. द ट्रैक इज ये क्या हुआ बैक फ्रॉम द डेज ऑफ 2000s एल्बम डे सिंगल्स एंड ऑफ कोर्स अप सन रे द बिग लाइफ व्हिच आई से इजी ड्रिवन ट्रैक्स फॉर 4 hours मेरे यानी उज्जवल खन्ना के साथ.
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: एंड ऐसे ही वेरी इजी पीजी स्नैक्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली विद योर किड्स. यू नो इन 3-4 days बच्चे भी घर पे होंगे एंड दे जस्ट कीप आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ फूड अ लॉट ऑफ स्नैक. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके डब्बे में पैक होने चाहिए एयरटाइट कंटेनर में. ऑल दीज स्नैक्स आर सो हेल्दी सुपर हेल्दी एंड यू डू इट एट योर प्लेस व्हिच मेक्स इट इवन मोर हेल्दियर. आई एम टॉकिंग अबाउट मखानास. मखानास को अंग्रेजी में काहे बोलते हैं एंड द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इज फॉक्स नट्स. इसका एक और नाम भी है लोटस सीड्स बाय द वे. दे आर न्यूट्रिएंट रिच वेरी लो कैलोरी सुपर फूड. थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है बट आई डू अ लिटिल बिट ऑफ चीट हियर बिकॉज माय इन-लॉज दे स्टे इन अजमान. तो वहाँ पे रिलेटिवली ग्रोसरी जो है वो सस्ती होती है. सो एवरी टाइम शी गोज टू माय इन-लॉज हाउस मतलब अपने घर जाती है जब एंड व्हेनेवर शी कम्स बैक विद 3 or 4 पैकेट्स ऑफ बिग मखानास एंड देन ऑफ कोर्स शी कीप्स इट एंड देन शी कीप्स ऑन डूइंग इट इन घी सॉल्ट हल्दी लगाकर और उसको एयरटाइट डब्बे में जो है वो डाल देती है ताकि जब भी मेरा बेटा मांगे वो दे देती है. सो नेक्स्ट टाइम यू नो इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ग्रेट स्नैक व्हिच इज़ हेल्दी व्हिच इज़ हार्ट फ्रेंडली व्हिच इज़ रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर व्हिच इज़ गॉट एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मखाना इज द की व्हिच इज़ फॉक्स नट्स आर द की फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर किड्स. राइट नाउ फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय सेल्फ राइड. दिस इज फॉर यू एंड फॉर एवरीवन इन योर फैमिली. द ट्रैक इज रोजाना. टेक इट अवे आपके साथ अंटिल 5. दिस is the big life.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

0: Imagine your home powered by Next Level Fiber. With Fiber Plus from E&, enjoy advanced Wi-Fi 7 performance for faster streaming, smoother gaming, and expanded coverage in every room. More speed, more coverage, more performance. Experience the difference with Fiber Plus. Visit E&, to know more. T's and C's apply. E&, go for more.
1: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
2: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
1: कल हो ना हो।
3: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: You think lifting 5 kilo weights makes you immortal? It doesn't. But life insurance makes you prepared. InsuranceMarket.ie.
1: Song of the Hour episode now brought to you by InsuranceMarket.ie. Ujwal Khanna ke saath. Now, every hour, if you're thinking ki maine wo task kiya, ye bach gaya tha, ye maine submit kar diya, nahi kara, ye long break se pehle, that means abhi bhi aapke dimag mein kaam ghoom raha hai aur wo bilkul hona nahi chahiye.
2: The Big Life with Ujwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ। लाइफ में अगर एक बार आपके दिमाग का टॉगल स्विच ऑफ हो गया है वर्क रिलेटेड इस फंडामेंटल से, तो वो ऑफ हो गया, देन यू ऑफ द लैपटॉप, यू ऑफ एवरीथिंग। और ये जो सिद्धांत है ये आपको खुद ही डेवलप करने पड़ेंगे। नोबडी विल टेल यू, ऑल द मैनेजर्स वुड वांट यू टू वर्क मोर, बट दिस इज द लाइन, द फाइन प्रिंट दैट यू हैव टू स्ट्राइक, यू हैव टू ले डाउन फॉर योर ओन सेल्फ कंसिस्टेंसी एंड ऑफ कोर्स बिल्डिंग अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। इन दिस एरा हर कोई ये बोलता है, इफ यू स्नूज यू लूज। बहुत सारे लोग, आप, मैं, हम डरते हैं ऑफ टेकिंग अ ब्रेक, नॉट जस्ट दिस लॉन्ग ब्रेक विच द गवर्नमेंट इज गिवन अस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज वेल। बट ब्रेक लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सबसे पहले आपका जो डिसीजन फटीग है वो प्रिवेंट होता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी जो क्वालिटी ऑफ डिसीजंस हैं अगर वो डिटोरिएट हो रहे हैं आपको लगता है, इसका मतलब इसलिए है क्योंकि आप काम इतना ज़्यादा कर रहे हो, काम का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है कि आपको समझ भी नहीं आ रहा, आपके जो दिमाग की वायरिंग है वो हिल गई है कि मैं ये डिसीजन सही भी ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ। नंबर टू, आपका लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने का सबसे बड़ा जो एक पैरामीटर होता है वो है ये ब्रेक लेना, और उसको लेने के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। सो दिस लॉन्ग ब्रेक, ऑल दीज शॉर्ट ब्रेक्स, मिनी ब्रेक्स दैट यू टेक, यू नो, इट हेल्प्स रिस्टोर दैट मोटिवेशन, इट बूस्ट्स योर प्रोडक्टिविटी, इट इम्प्रूव्स योर क्रिएटिविटी। और ये जो ब्रेक्स है इसको भी इफेक्टिव बनाना है। ऐसा नहीं कि नेटफ्लिक्स देख देख के ब्रेक ले रहे हो तो मतलब हो गया। इसमें भी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान करो। अगर सुबह नहीं उठ सकते, देन मिड डे, एट द एंड ऑफ द वर्क डे, जब भी आपको लगे कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम है, दैट्स नंबर वन। हमेशा टेक अ नैप टू रिचार्ज, ओके? गेट अ हेल्दी स्नैक फॉर योरसेल्फ। योगर्ट हो गया आपका, क्या बोलते हैं, ग्रीक योगर्ट, आमंड्स, देन प्रोटीन बार्स, टोमेटो जूसेस, ये सब। कॉफ़ी पीजिए बीच बीच में। एंड कितना ब्रेक लेना है? You can take a break once every hour as well. For these long-term breaks, mini breaks, आपको कितना चाहिए? Okay, all these things, ये आपको कमाल का एक calibrated process देगा, so that when you come back recharged on Monday, you'll figure out there's something that is different. और हाँ, ये एक दिन की approach नहीं है, it's an exercise, it's a pattern, it is a proper training program to train your brain muscles of how you can do that. Arijit Singh ke awaz mein, he is trained, he's power packed, and that's why, you know, he's so good with all the tracks that he sings. Pal, that's what I'm playing aapke saath until 5. This is The Big Life.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: दो पत्ती से गाना आपने सुना बिग 106.2। अगर आपकी कंपनी आपके साथ दो पत्ती तीन पत्ती खेल रही है।
1: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: लेट मी टेल यू, इफ यू आर वर्किंग ऑन ऑल दीस डेज यू आर सपोज्ड यू आर एंटाइटल्ड टू गेट डबल पे। ओके, इट्स अकॉर्डिंग टू द मोहरे लॉ। अपने एचआर को ये लाउड एंड क्लियर सुना देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एचआर को ऐसा लगता है कि आपको नहीं बता दो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये लगने लगाने वाली जो गेम है वो खत्म हो जाती है। इट्स जस्ट एन FIR टू यू, इफ यू आर वर्किंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीस 4-5 डेज यू आर सपोज्ड टू गेट डबल द पे, यू नीड टू फिगर आउट दैट इन योर कॉन्ट्रैक्ट और जस्ट स्पीक टू द एचआर। ओके, and apart from that, what you could do is you can probably work from a laptop friendly cafe if your HR is insistent of you to work. Take that laptop. बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफेज हैं, कोई भी लोकल पार्क आप वहाँ पे जा सकते हैं। आइसक्रीम्स फ्री मिल रही है बच्चों को। यू कैन गो टू पॉन्ड पार्क, यू गुरु मुशरफ, यू गुरु जबील। ऑल दीज प्लेसेस आर ग्रेट फॉर यू टू कनेक्ट विद नेचर, साइमल्टेनियसली डू योर ओन चोर्स एज वेल। ओके, यू आर एंटाइटल्ड टू अगेन इन ब्लॉक लेटर्स एंटाइटल्ड फॉर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम इन केस यू वर्क। फास्ट ट्रैक सॉन्ग, द सॉन्ग वर्क्स, द ट्रैक इज मदारी। विशाल ददलानी आपके साथ अंटिल 5।
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो.
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो.
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गोल चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गोल चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो।

0: सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big 106.2

0: ਤਾਲ ਸੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਬਿਗ 106.2 ਪੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਮੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅ ਡੋਲ ਲਾਈਕ ਅ ਫੇਅਰੀ। ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਰ ਆਵਰ ਟੂਡੇ,
1: ਦ ਬਿਗ ਲਾਈਫ ਵਿਦ ਉਜਵਲ ਔਨ ਬਿਗ 106.2 ਦ ਬੀਟ ਆਫ Bollywood.
0: Well, she's slaying it, cans with all her looks, all her dream looks. Most importantly, jo white wali look the, unki kamaal thi. जहाँ तक बात करूँ ताल की, इतनी सादगी, इतनी प्योरिटी से सुभाष घई साहब ने ये फिल्म दिखाई थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐश्वर्या राय, शी जस्ट लुक्स सो डिवाइन, जस्ट लाइक द माउंटेन गर्ल एनी डायरेक्टर कैन इनविजन, शी हैड दैट इन हर। वेल, टॉकिंग अबाउट ताल, एंड हाउ कैन वी फॉरगेट दिस सीन जब वो अपने हाथ से बना के लेके आती है एक सैश और वो मानव उर्फ अक्षय खन्ना को देती है, मानव की मानसी। जस्ट हैव अ लिसन टू दिस वन प्लीज।
2: ये मैं तुम्हारे लिए,
3: लेकिन ये तो मेरा है।
2: हाँ, लेकिन अब हम दोनों का है। देखो,
3: ये मानव सी मतलब,
2: मानव सी मतलब, मानसी, मानव जैसी।
0: इस फिल्म का तो सब कुछ ही अच्छा था, बैकड्रॉप, थिएट्रिकल साउंड इफेक्ट्स, एंड ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम लुक सो नाइस। आई थिंक ये मानव की मानसी से ही ट्रेंड शुरू हुआ, एंड देन ऑल ऑफ अस नाउ हैव गॉट दीज शॉर्ट नेम्स फॉर आवर पार्टनर्स, आवर स्पाउसेस, जैसे विरुष्का हो गई, एंड यू नो दोज ट्रेंड सेटिंग नेम्स दैट जनरली पीपल कीप टू मेक श्योर दैट दिस स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी, इज अप एंड रनिंग। स्टे लॉक्ड ऑन बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, इट इज अप एंड रनिंग अगेन। शी लुक्ड गॉर्जियस इन दोज ओनली वाइट साड़ीज दैट शी वोर फ्रॉम द फिल्म मोहब्बतें। द ट्रैक इज हम को हम इसे चुरा लो आपके साथ अंटिल 5 o'clock।
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae।

0: 92.2 The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

ऐश्वर्य राय स्पेशल आप सुन रहे हैं कुमार शानू की आवाज फ्रॉम द फिल्म दिल का रिश्ता अर्जुन रामपाल के साथ। ही फिल्म नहीं चली गाना बहुत प्यारा है और ऐसा ही एक और जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ अगेन फिल्म नहीं चली लेकिन गाना बहुत प्यारा है विद देन बॉयफ्रेंड नाउ टुडेज हस्बैंड। उस समय बॉयफ्रेंड थे क्या अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या के आई डोंट नो। द ट्रैक इज अच्छी लगती हो कविता कृष्णमूर्ति की आवाज ऑल अबाउट हाउ शी इज स्लेइंग एट द कैंस ऐश्वर्या राय बच्चन द रिप्रेजेंटेटिव द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लोरियल। द सॉन्ग इज सो नाइस एंड सो स्वीट टेक इट अवे।

0: You think lifting 5 kilo weights makes you immortal? It doesn't. But life insurance makes you prepared. InsuranceMarket.ie.
1: Song of the Hour, brought to you by Insurance Market. Aapne suna Faranak Dar from the film Rock On. Ujjwal Khanna ke saath. This is The Big Life.
2: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि रॉकिंग परफॉर्मेंस होगी लक्ष्य कपूर और अनन्या पांडे की, द फिल्म वुड डू वेल. अभी मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं. आई डोंट नो, मे बी द नेक्स्ट वीक, एक्चुअली दिस वीक वुड होल्ड द फेट ऑफ चांद मेरा दिल. धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टेक्स. अ लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट लक्ष्य कपूर का टाइम चल रहा है, शायद फिल्म अच्छी होगी. देयर इज वन रिव्यू दैट आई हैव गॉट, यू वुड वांट टू लिसन टू दिस प्लीज. एंड दिस कम्स स्ट्रेट फ्रॉम इंडिया फ्रॉम अ मैंगो ऑडियंस. दिस इज व्हाट शी इज सेइंग.
3: दिल देख ली मैंने एंड भिंडी, अगर आपको लग रहा है मस्त फेरी टेल देखने मिलेगी तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इस फिल्म में मॉडर्न रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड डायनामिक्स को खुले में एक्सपोज किया है कि बैठे-बैठे कॉलेज ब्रेकअप याद आएगा. फिल्म ने रिलेशनशिप में क्या नहीं और क्या करना चाहिए सब समझा दिया, जिससे लाइफ के एलोमिनो पीना लगे और आज की जनरेशन इससे 100% रिलेट करेगी. भाई बड़े टाइम बाद कमाल की लव स्टोरी देखने मिली है दैट फील्स लाइक वार्म हग. शुरुआत में रोमांस की रोलर कोस्टर राइड और कतई जहर गाने फुल टू मूड सेट करके रखता है और फिर एक गलती इनकी पूरी लाइफ ट्विस्ट कर देता है. दोनों का प्यार बाबू ने थाना थाया से बाबू तो जहर खा के मर जा फुल टू ट्रेजिक हो जाता है. पिक्चर में पॉपकॉर्न की जगह टिश्यू पेपर मंगाओगे क्योंकि आगे सिचुएशन इमोशनल इंटेंस एंड हार्ट ब्रेकिंग बन जाते हैं एंड लक्ष्य का काम इतना प्यारा है कि उनसे प्यार हो जाए. भाई बंदे ने एक एक इमोशन एंड सेंटिमेंट को पकड़ के निचोड़ा है. डायलॉग्स कनेक्ट करते और अनन्या लक्ष्य की केमिस्ट्री और उनके इंटेंस सीन्स बिल्कुल भी फोर्स या क्रिंज नहीं लगते. डायरेक्टर विवेक सोनी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे जॉनर में हमेशा से ही अच्छा रहा है. रॉन्ग डिसीजन, ग्रीफ एंड रियलाइजेशन सारे चीजों को अच्छे से टच किया है. सो ओवरऑल चांद मेरा दिल इज रियलिस्टिक एंड ग्राउंडेड लव स्टोरी जो बिल्कुल बोर नहीं करती. पैसा रिफंड मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बिंदास अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, साइड चिक, बीवी सबको लेकर जाओ.
1: ओके, सो दैट्स व्हाट शी सेड. आई डिडंट से एनीथिंग. आप भी देख के आओ, और अगर आपने देख लिया ऑलरेडी तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉप इन अ रिव्यू ऑन आर इंस्टाग्राम 106.2 बिग एफएम. इन फैक्ट यू कैन गिव मी कॉल ऑन 800-106-2. आपको कैसे लगी चांद मेरा दिल राइट नाउ? दिल से गाना, द ट्रैक इज यूफोरिया से धूम पिचक धूम. आपके साथ अंटिल 5, दिस इज द बिग लाइफ. उज्ज्वल खन्ना के साथ वी आर पार्ट ऑफ वन एशिया नेटवर्क.

0: समझती क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
2: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
1: कल हो ना हो।
3: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आश्किन के वाज बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ है. टाइम टू वाइंड अप फ्रॉम हियर आस्किंग मानसी टू कम इन नॉट बिफोर दिस एक्साइटिंग पीस ऑफ न्यूज. अगर आप गिपी ग्रेवाल के फैन हैं, कैरी ऑन जट्टा के फैन हैं, देन कैरी ऑन जट्टा 4 नाउ दैट वुड बी रिलीजिंग वेरी सून. एंड ऑफ कोर्स गेट रेडी टू मीट द ब्लॉकबस्टर स्टार्स ऑफ कैरी ऑन जट्टा 4 लाइव इन दुबई ऑन द 29th ऑफ मे. गिपी ग्रेवाल, सरगुन मेहता, Binnu Tillo and Karamjeet Anmol, you can catch them live at Global Village Main Stage on 29th of May 2026 from 7 p.m. onwards. And of course, the celebration continues with the official after party at Opus Club Dubai from 11 p.m. onwards. Event partners, Royal Skin Cosmetic Clinic, Celebrity Nation, Ladies Fusion, CADS Entertainment and Big 106.2. Tour organized by Dream Advertising and Big Bash Squad. Don't miss the madness. And if you've seen Carry On Jatta, then I'm sure the madness continues in Carry On Jatta 4 as well. Well, carrying on, like I've told you, exiting the studio, the entertainment dossier continues on Big 106.2. Mansi, she comes in next with the big thrill.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: Get car insurance from insurancemarket.ae. Call or WhatsApp 800 Alfred. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. What a feeling. भाई आधे से ज्यादा जनता जो है छुट्टी पे गई है. ऑफिस में भी आज छुट्टी वाला माहौल है क्योंकि हमारे तो बॉसेस भी छुट्टी पे गए हुए हैं. फिलहाल ऑल सेट टू कीप यू कंपनी हियर अंटिल 9. मैं हूं मानसी. इफ यू हैव नॉट मेड एनी वीकेंड प्लान्स, हाउ अबाउट यू गो एंड वॉच योर फेवरेट मूवी. I've got open movie tickets to give you. आप जाके जो मूवी दिल चाहे देख सकते हैं. And I'll give you all the details कि कैसे आप ये couple movie tickets जीतेंगे. But फिलहाल 5 से 6 every single evening we play this fun game. It's called the 5 second rule. आपको मिलते हैं 5 second. मैं आपको देती हूँ कुछ categories. 3 चीजें बतानी होती हैं 5 second के अंदर. I know बहुत easy sound करता है, but past experience जितनों का भी है ये इतना easy नहीं है. अगर आपने try करना है, give me a call 800-1062 पर. We are bringing in the long weekend. In fact, we are in the long weekend mode. Right here on Big Water 6.2, a part of Fun Asia Network.

0: गाना बजा दूं।
1: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहां लेकर आए थे, कहां लेकर जाओगे। मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: ए बुड्ढे, ए
2: बुड्ढे। नमस्ते।
1: पहले आप आदर कीजिए, आप गुस्सा नहीं होंगे।
2: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
1: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
2: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है। गुस्सा आ जाएगा,
3: गुस्सा आ रहा है। देखिए,
2: ये गुस्सा नहीं है।
4: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
5: कार्निवल, The Last Ride, King.

0: with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening, welcome to the Big Thrill. All set to give you open movie tickets this hour long weekend. अगर कोई plan नहीं है, go and watch a nice movie, जो movie आपने देखनी है. Also, ये तीसरा हफ्ता है मेरा गाड़ी चलाते हुए. बहुत सारे और problems हैं मेरे गाड़ी चलाते वक्त. But number one ये है कि मैं exit ही भूल जाती हूँ. मतलब maps लगाती हूँ, ways देखती हूँ. Last weekend, in fact this Saturday only, मैं आ रही थी from JLT to बर्षा. It took me 1 hour. मतलब इतना पेट्रोल फूक रहा है ना मेरा, क्योंकि मैं एग्जिट भूल जाती हूँ. लास्ट मोमेंट में लेन नहीं चेंज कर पाती हूँ. एक्सपीरियंस ड्राइवर्स, मुझे ये बताओ, ये जो दिक्कत है ये कितने दिनों में, कितने महीनों में खत्म होगी.

0: भेंट की। गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, यह बिग थ्रिल, मैं हूँ मानसी। बड़ी थ्रिल, बड़ी एक्साइटेड थी कि 11 साल बाद मैंने लाइसेंस लिया है, अब तो मैं बस धूम मचाऊंगी। बट मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे TNCs डू अप्लाई होते हैं, मतलब यू हैव टू नो द रोड्स बिकॉज यू विल कीप मिसिंग एग्जिट्स। पिछले हफ्ते स्प्रिंग से बरसा, मुझे इतना टाइम लगा आने में, मतलब आप मानेंगे नहीं, अलसाइल लेनी होती है स्प्रिंग से वर्षा के लिए टू जस्ट गेट होम। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आई डोंट नो, समहाउ वेंट टू JVC, देन JVC के अंदर मैं घूम गई। उसके बाद सुनो, कहानी खत्म नहीं होती, मैं दुबई हिल्स मॉल पहुंच गई, उसकी पार्किंग तक पहुंच गई, आई डोंट नो व्हाई। एंड देन फाइनली जैसे तैसे मैंने ऊपर वाले से दुआ की प्लीज मुझे आज शारजा मत पहुंचाना, मुझे बस उमसुकीम तक पहुंचा दो। एंड जैसे तैसे उमसुकीम तक मैं पहुंची हूँ, एंड उसके बाद फाइनली आई कुड फाइंड माई वे बैक होम। इस वीकेंड ये हुआ कि JLT से मैं रात को वापस घर आ रही थी आफ्टर मीटिंग अ फ्रेंड, एंड अगेन आई मिस्ड अ फ्यू एग्जिट्स, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब मैं JLT में ही गोल गोल गोल गोल घूम रही थी। सो आई एम आस्किंग यू एज एन एक्सपीरियंस ड्राइवर, प्लीज डोंट टेल मी मैप्स यूज करो, वेज यूज करो। भाई वो भी कॉम्प्लिकेटेड है फॉर अ न्यू ड्राइवर, कि गाड़ी चलाऊं, कि मैप देखूं, कि रूल्स फॉलो करूं, इट्स ओवरवेलमिंग। कितने महीने लगते हैं टू गेट यूज टू इट, लाइक ड्राइविंग बिकम्स ड्राइविंग, इट डजंट फील लाइक अ टास्क। क्योंकि अगर आप काफ़ी दिग्गज हो चुके हैं इस फील्ड में तो आप बोलेंगे अरे ये तो मजाक कर रही है, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। बट जितने भी नए लोग हैं जिनको एक साल ही हुआ अपना लाइसेंस लिए हुए, कितना टाइम लगा था टू गेट यूज टू ऑल ऑफ दिस, प्लीज डू लेट मी नो। आई एम आस्किंग फॉर माई सेल्फ, बहुत जरूरी है मेरे लिए ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, क्योंकि एवरी डे आई थिंक यार मैं ठीक ही थी, यार टैक्सियों में मैं ठीक ही थी।
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae।

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री, तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। ब्रदर

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे, बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: आज तो मंडे का माहौल टोटली फ्राइडे सैटरडे वाला है. लॉन्ग वीकेंड इज हियर. व्हाटएवर यू प्लानिंग, इफ यू वांट टू गो एंड वॉच एनी मूवी दैट यू फील लाइक, आई स्टिल हैव ओपन मूवी टिकट्स टू गिव यू. सवाल बड़ा सिंपल है, कुणाल खेमू का आज बर्थडे है, उन्होंने अपना डेब्यू किस मूवी के साथ किया था, दैट्स इट. ऑल्सो मेरा सवाल आपसे ये था कि कितने महीनों कितने दिनों बाद आप एज अ ड्राइवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं टू ड्राइव, टू फॉलो रूल्स एंड टू ऑल्सो फॉलो द मैप्स. बिकॉज मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं इतने एग्जिट मिस करने लगी हूँ ना, इतना तो मैंने कभी किसी एक्स को भी अपने मिस नहीं करा है. तो

0: मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Winning moments this May with Big Ticket.
3: A 20 million dirham grand prize.
2: And 5 consolation prizes of up to 1 million dirham.
3: Plus weekly cash.
2: Buy now at bigticket.ie.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
5: Hi, I'm Neha. Honestly, मुझे old gold exchange करने में हमेशा थोड़ी hesitation होती है. मेरा concern था, क्या मुझे correct value मिलेगा? कहीं hidden deductions तो नहीं होंगे? मैंने तनिष्क ट्राई किया, प्योरिटी चेक हुई एंड एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड। नो हिडन चार्जेस, नो लास्ट मिनट सरप्राइजेस। आई गॉट 20 दिरहम्स एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज ऑफ माय ओल्ड गोल्ड, और मैंने अपने लिए ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी भी खरीदी।
1: विजिट योर नियरेस्ट तनिष्क स्टोर टुडे। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Jetour UAE, part of Elite Group Holding, and Fly Dubai. Burger craving? Pizza craving? Why choose when you can have both? Introducing the new Cheddar Burger Pizza Collection from Papa John's. Dive into Double Cheddar Nashville, or the Juicy Chicken Burger, or the Bold Flavor-Packed Beef Burger Pizzas. It's burgers and pizza, together like never before. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Order now.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अगर इस वीकेंड आपने भी देसी ब्लिंग देखा है एंड यू आर आल्सो एन एम्प्लॉई नॉट एन एम्प्लॉयर, आई थिंक दिस इज अ साइन. अगर आपको वैसी लाइफस्टाइल चाहिए तो अपना बिजनेस करना पड़ेगा बॉस. एंड फॉर दैट अजमान फ्रीज एंड अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस करा है द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस. ग्रेट न्यूज फॉर ऑल दोज हु विश टू ओपन देयर स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज. अब आप ये कर सकते हैं without any delay with a fee starting from 5,555 dirhams to get your business license. All you need is a business idea. Baki Ajman Free Zone Authority will take care of your visa, your bank requirements. Bahut hi quick, completely digitized hai pura process. TNCs do apply. To get your one click license, any more information, do visit afz.ae.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गोल्ड चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गोल्ड चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: हाई, आई एम नेहा। ऑनेस्टली मुझे ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करने में हमेशा थोड़ी हेजिटेशन होती है। मेरा कंसर्न था क्या मुझे करेक्ट वैल्यू मिलेगा, कहीं हिडन डिडक्शंस तो नहीं होंगे। मैंने तनिष्क ट्राई किया, प्योरिटी चेक हुई एंड एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड। नो हिडन चार्जेस, नो लास्ट मिनट सरप्राइजेस। आई गॉट 20 दिरहम्स एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज ऑफ माई ओल्ड गोल्ड, और मैंने अपने लिए ब्यूटिफुल डायमंड ज्वेलरी भी खरीदी।
1: विजिट योर नियरेस्ट तनिष्क स्टोर टुडे।
3: Think car rentals are expensive? Think again, because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.

0: insurancemarket.ae. Home insurance covers all things if there's a fire. Please get home insurance before it's too late. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: अगर इस वीकेंड आपने भी देसी ब्लिंग देखा है एंड यू आर आल्सो एन एम्प्लॉई नॉट एन एम्प्लॉयर, आई थिंक दिस इज अ साइन. अगर आपको वैसी लाइफस्टाइल चाहिए तो अपना बिजनेस करना पड़ेगा बॉस. एंड फॉर दैट अजमान फ्री जोन अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस करा है द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस. ग्रेट न्यूज फॉर ऑल दोज हु विश टू ओपन देयर स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज. अब आप ये कर सकते हैं without any delay with a fee starting from 5,555 dirhams to get your business license. All you need is a business idea. Baki Ajman Free Zone Authority will take care of your visa, your bank requirements. Bahut hi quick, completely digitized hai pura process. TNCs do apply. To get your one-click license, any more information, do visit afz.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, दिस इज द बिग थ्रिल मानसी. इन लोगों को ना बड़ा फ्लेक्स करने में मजा आता है. हमने लाइसेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया, सेकंड अटेम्प्ट में लिया. मैं कह रही हूँ फ्लेक्स करूँ कि लाइसेंस मिलने के बाद आपने गाड़ी कैसी चलाई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां तक तो इट्स जस्ट लाइक नर्सरी स्कूल. असली आपकी एग्जाम जो है वो रोड पे होती है. एंड बींग अ न्यू ड्राइवर, इट इज वेरी वेरी हार्ड कि मैप्स देखो, एग्जिट्स देखो, रूल्स फॉलो करो, दूसरी गाड़ियों से थोड़ा सा दूर के बच के रहो. राइट नाउ गॉट शाहनवाज. हाय शाहनवाज.
2: हाय,
1: हाउ आर यू?
2: I'm good, fine.
1: इतने थके क्यों हैं आप?
2: एक घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं.
1: अरे अरे अरे, देखो अभी आप, हम भी आपकी लीग में आए. तो कितने साल हो गए आपको गाड़ी चलाते हुए?
2: 5 years हो गए.
1: तो आप तो काफी यू नो एक्सपीरियंस्ड हैं मुझसे, बट शाहनवाज कितना टाइम लगता है यार, जब वेन एज अ ड्राइवर यू नो वॉट एग्जिट टू टेक, यू कैन ऑल्सो लुक एट द मैप, यू कैन ड्राइव, यू कैन ऑल्सो फॉलो द रूल्स एंड नॉट वरी अबाउट थिंग्स गोइंग हियर एंड देयर. बिकॉज राइट नाउ बहुत ही ओवरवेलमिंग है मेरे लिए कि मैं क्या करूँ. मैं आगे से अपनी जो दूसरी गाड़ी है उसका डिस्टेंस देखूँ, स्पीड मेंटेन करूँ, मैप देखूँ, बहुत कुछ देखना पड़ता है.
2: मैं तो अभी फिलहाल मैप्स यूज करता हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे रोड ज्यादा पता नहीं है दुबई में.
1: यार बट कितना मुश्किल हुआ होगा शुरू शुरू में आपके लिए, रोड पे ध्यान दो, मैप पे ध्यान दो, एंड यू नो नई नई नई आपने कोई स्किल सीखी है तो आप एकदम एक्सपर्ट भी नहीं है उसमें.
2: यस, बहुत मुश्किल हुआ था.
1: कितने फाइन लगे थे? मैं पूछने वाली थी कितने फाइन लगे.
2: मेरे को 3,000 तक लगा था. एक ओवर स्पीड लग गया था, एक लाइन चेंज कर लग गया था.
1: उस समय आपने ये क्वेश्चन नहीं करा कि मैं ठीक था यार टैक्सी और मेट्रो में?
2: बस में ठीक था.
1: ये देखा कह रहा है बस में ही ठीक था, बट कितने दिनों बाद सब नॉर्मल हो जाता है कि मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता. ठीक है यार, लग गया, फाइन लग गया, एंड यू बिकम वेरी नॉर्मल एंड कैजुअल, लाइक जैसे आप मुझसे अभी गाड़ी चलाते हुए बात कर रहे हैं ब्लूटूथ पे. ऑफ कोर्स
2: लग जाता है, नॉर्मल हो जाएगी आप.
1: कितने महीने के बाद?
2: 2 years में हो जाता.
1: 2 years?
2: 2 साल के अंदर. यस, उसके बाद आपको नॉर्मल दिखता है.
1: 2 साल तो बहुत लंबी जर्नी है भाई. मैं तो सोच रही थी आप बोलोगे 2 महीने में या 2 हफ्तों में. चलो 2 हफ्ते तो हो गए, 2 महीने स्टिल अ रीजनेबल टाइम. 2 साल लगेंगे
2: आपको. 1,600 का फाइन लगने के बाद आपको दर्द होगा.
1: अच्छा अच्छा बोलो शाहनवाज, अच्छा अच्छा बोलो. मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है.
2: 3-4 महीने तक वो दिमाग से नहीं जाएगा.
1: नहीं, कोई फाइन ना लगे. फाइन लगे मेरे दुश्मनों को, मुझे एक भी फाइन ना लगे. मैं बहुत सेफ ड्राइवर हूँ. मैं तो बिल्कुल स्पीड मेंटेन करके चलाती हूँ, चाहे पीछे से कोई कितना भी हॉर्न मारे. अगर मैंने देखा है 60 है तो मैं 60 पे ही चलाऊंगी, 65 भी नहीं जाती मैं. ज्यादा प्रॉब्लम किस में आई थी आपको, गाड़ी चलाने में या पार्किंग में? मुझे पार्किंग में भी बहुत प्रॉब्लम आई थी शुरू शुरू में.
2: रोड से याद रखने में
1: आप कुछ ज्यादा, आपने मुझे मोटिवेट तो नहीं किया शाहनवाज. आपने यही कह दिया है कि फाइन लगेगा तब पता चलेगा, तो ऐसा कुछ बहुत वर्ड्स ऑफ विजडम आपने मुझे दिए नहीं है. बट एनीवे, यू हैव अ ग्रेट लॉन्ग वीकेंड. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड एंजॉय योर टाइम विद योर फैमिली. ठीक है,
2: थैंक यू सो मच.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
1: अबू धाबी योर हेल्थ मैटर्स दैट्स व्हाई insurancemarket.ae इज नाउ हियर.
0: Love, lo-fi, and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on the Big Chill. On Big 106.2, the beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।